एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं चौपाई कभो बार बेनती चौपाई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मर हमारा अपना जान करो पतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काब हुआ पहाद मोए बचाव सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर चान कर दे करिए सब पैरन को संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाट कोई अब न त्याऊ जो पार चाहूं सतम ते पाम सेवक सिख मारे तारिए चुन चुन शत्र मारे मारिए आप हाद मुझे उबरिए मरण काल का त्रास नवरिए हुजो सदा हमारे पछा श्री अस तौज जो करहु रचा श्री अस तौज जो करहु रचा राख रो मोराखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कार विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की ओ पेज राय ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जश्न उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारे सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरण को फल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत भरे बुरे के पीर पछानत चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकारख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह पारा जब अकारख करत हो कब हो तुम मैं मृत देह तर सब हूं जेते बदन सृट सब धारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद रियालम निरंकार निरपकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पात बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कर भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतन भव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तू है तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किह बिद सजा पिथन संसारा इकै रूप अनूप स्वरूपा रंक प्यो राव कि पूपा अंडज जे रसे तजकिनी उत्पुर खान बहर रच दीनी कहूं पुर राजा वह बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकठा सगरी सिरट दिखाई अचंभव आद जुगाद सरूसियम पव अबरछा मेरी तम करो सिख पार सिख संगरो
दुष्ट जिते उठवत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तम संकट सवटारे। जो काल को एक बार त्याए है, ताके कार निकट नह है। रचा हुए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई। एक बार जंत में संभारा, कार फांस ते ताहि उपारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा।

जाय। पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आख तरे निया नियो। राम रही पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र बेस पैबो भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा। सगर द्वार को छाड़ कै केहो तुहारू द्वार बाहे गहे के लाज अस्त

राग तनासरे बाणी भगत कबीर जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश माना

ऊचा सगल समगरी तुमरे तुमते हो ऐसो तुमरी गात मेत नानक दास सदा बुरना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद कुरते अमरदास रामदासे होए सहाय अर्जन हर को पिंदनो सिमरौ श्री हर आय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौन ते आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ उपदेश जी दा ध्यान तर खालसा जी साहिब बुरना जी गुरु जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख पाहे

प्रथम समूह खालसा जी की अरदास है। समूह खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रवायत,

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संके अंचल लाभो, बिखम नदी जय तरणी। सो कोहटल गुर सेवी एहन सह सुपाहे, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, हो वह सिफ दुख सम दे, नूर अरसों कुरसों झटी है, तुद डिठ सच्चे पातशाह, मर जन्म जन्म दे कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी, दिलांग घर दूजा महला पंजवा, तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करहे सो होए।

संत जना के बाछो तुहूर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। आगे बसन सहे औध कटै दिन सो रहनारे मन गुर मिल काज सवा रहा।

0: सुखम मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु के अरदास।
1: वाहिगुरु सब तेरी वड्या